बाजत बसंत और पैर वहलोल राग ये 11 रागों का गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने सरवण किए हैं जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हैं। तो सत आप संगत की आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके यहोजी चीज़ा जो गायन कीतियां जांदियां हैं। तो सतसंग जी ये स्वरां का मिलाप है जो सत स्वरां नूं गुरुआ ने गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे गुरु साहबान ने सत सुरां दे विच गाया है। तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां सत सुरां विच कीर्तन किया सारे गावा पा दा निशा ये सत स्वर। तो इन्हां सुरां नूं गुणी जना ने विद्वान लोगों ने ऋषिया ने मुनिया ने पीरां पैगंबरां ने सारे ने इन्हां सत सुरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन पंक्षियों की आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त हुई। सब तो पहला जदों विद्वाना ने सात सुर लभ्या है तो सात सुर कित्थों मिलिया उन्हें कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दियो। जद मोर बोलिया जंगल दे विच तो उन्होंने मोर की आवाज नू सात सुर मन लिया सा बन दिता मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दियो। चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है जदों चातरक पपिया बोलिया ते रे सुर लग्या ते विद्वाना ने रे बन लिया ये रे बन गई सा रे। चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो अजा मैंने भेड़ है जदों भेड़ बोलदी ते गा सुर लगदा है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है जदों कूंज करलाउंदी है ते मध्यम सुर लगदा है मान सुर लगदा है। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद जदों अंब दी डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगदा है। कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है दादर मैंने डड्डू जदों डड्डू बोलदा है ते दास सुर लगदा है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो गजराज हाथी रंगून मैंने चीख जो जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्वाण जान सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कहियां हन। तो सतसंग जी ये संगीत जो है इथों दे बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं। तो आप जी का सारे का फर्ज है इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं। ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे। आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म होया सी कि दो शब्द रहत के बारे अमृत

हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेखे राम तिनके पागल।

कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई कर कर पाप, पाप बुरा पापी को प्यारा, कर कर पाप दर्ब किया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, कर कर पाप दर्ब किया।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटाओ सिमरो

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

छत्री को पूत हां, चढ़दी कला दी बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, तैता पे आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तोह त्याग कहा जितता मैं धरो, और जंजार जितो ग्रह को तोह त्याग कहा चितता मैं धरो, अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आम की आग निदान बढ़े

शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिखाओ अपने ही मन को ए लाल जहां।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मोने में मन दे तन दे सिर ना धन है सभी के मगरे में मन के तन के सिर लो धन है सब ही इन्हीं जब्द जिते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुदान करे आज आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की

बंद कला करे बेनती धर्म राय और सेवक ठाकर गणे धरन अमान करे मिल जाए पासिंग पाप न पूछ गुरमुख ना अतुल नर को छुट्टे

कौड़ीदार महंडा चली खान तो मिले तमस्त कलाई है उड़ा लाल छेड़ी है एक मनाल त्याई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द का करता है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नाटक दास है सुनन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा वस्तु जे

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। जिस सेवा मिल गई है तो कर ही तदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदो भागा वाला दिन चले धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाए करा सामान क्योंकि कड़ी ने इशारा किया समा सुख की कड़ी का पता नहीं आखो सही दुख की एक कड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही नहीं लगता किस तरह समा यही है मान धन गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश प्राप्त करने वास्ते आप सारे गुरु मार्ग ने मेहनत की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का जी करो ते इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगा राम दे सदके सानू भी दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु कारण किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन तन ना जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत वेले साढ़े पाई साढ़े छह का कीर्तन आशा जी की अमृत वेला सच ना वड़े आई कि नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कल शाम समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बस पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही ताइयो बाबा ने सिंह जी उथे चौबी घंटिया का सत्संग है डेली कोई आए चाहे ना पर पूर्णमासी का समागम खास होता है दास इंडिया विच होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरदा ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा ते सुरत नानक साहिब पहुंचा के दर्शन करांगे और फिर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास गुरु तेरे तेरी तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासे कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे माया कई रूप धार के पिछल किथे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नू पा गए आखो सही

सुजला संचौरासी ए भी कर कर रहा बड़ी आर जा फिर जन में अर्शो संग न दहा राजलीला राजन की रचना करया हुकुम अपारा सृज पवनी चंदन चोला नाग कोर का द्वारा हर तीर

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: प्रभु जी दे मार्ग ते चलदियां चलदियां जग्यासु नूं इह समझ आ जांदी है कि हरी अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम ही उस लई सब तों वड्डी दवाई है। इसे लई प्रभु दा नाम जपण लई बार बार बेनतियां अते अरदासां करदा है अते मन विच अपनी गलती भी महसूस करदा है कि संसारक झमेलियां करके ओ नाम नहीं जप सकिया। इसलिए बेनती करदिया होया महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी फुरमान करदे ने, औखद तेरो नाम दयाल मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करह प्रतपाल। भाव हे प्रभु मैनू समझ आ गई है कि केवल तेरा नाम ही मेरे लिए सारे दुखां दी दवाई है। मैं अनजान ने तेरी महानता नू नहीं समझिया, ऐ प्रभु तू आप कृपा कर ताकि मेरा जीवन सदा तेरे लेखे लग सके।

आप आवेदित हैं आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला होता है आपको श्री भाई आस्था वाले जीवन में आस है ना इंतजार है ना ये बड़ा सुख है ये कोई अगम्मी रस है साई की याद मालिक की याद यादा भी पूरी हो जाए पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना ये भी एक अवस्था है मालिक के दर्शन की प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाते मैं उस तो भी कुर्बान जाता हाँ जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल बन जैसा इस प्यास च जीवन बतीत होता रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री वाहिगुरु।

दुनिया का तारक दास है। आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोल। दुनिया का उद्धार करता एडा दयालु गुरु है। जे गलत फहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करता है। कौन है ओ जिहा मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु का नाम एक बारी सारे जपो, कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारिया नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदिया नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसी अदब विच सत्कार विच आओ, जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है। आओ रसना भी पवित्र करो, प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल, क्योंकि आपां सारे विहारी हां ना। कोई काम करिए ओदा लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जान वाला है, चाहे दुकान ते बहन वाला है, कोई भी किता करन वाला है। अपनी ड्यूटी देंदे हां सोचदा भी इतनी मैनू आमदनी हो रही है जां इतनी मैनू तनखा मिल रही है। कईयां नूं ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक दा नाम जपिया मिलदा की? आ जांदा है ना मन च, होया मन के ही कारदा कड़दा रहिंदा। कदे गुरमुख बन जांदा है, कदे मनमुख बन जांदा है, कदे दानी बन जांदा है, कदे मंगता बन जांदा है, कदे पुन्नी बन जांदा है, कदे पापी बन जांदा है, कदे नीवा हो जांदा है, कदे उच्चा चढ़ जांदा है टीसी दे उत्ते, कदे बुरा हो जांदा है, कदे भला। ये मन दा सुभाव है। तो फुरना बन जांदा है ना। तो आओ पहला पुछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦਾਰਦ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਸੋ ਭਯਾਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਭੋਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਅਚਾਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਜਗ ਕਾਗ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ। ਪਰ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਤੋ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਤੰਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਪਰ ਗੁਰ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੌਰਸ ਤੇ, ਸਟਾਪ। ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਟਾਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਟਰ ਮੂਧੀ ਫੌਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਧਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
1430 सफा पे बोलता है, कुछ एक एक अखर पे बोलता है। फिर सुन के जे ना मनिए तो ये साड़ी कमजोरी है। गुरु तो सदा ही बोलता है, ठाकर हमारा सद बोलता, सदा बोलता है, सदा बोलता है भाई, बाबा जी बख्शिश कर दे। तो आओ गुरु तू पुछिए, सिख दा जो तुरा है जीवन दा, तुरा कहंदे एक्सल नूं जिहड़ा विच हुंदा है गड्डी दे, जे ओह टुट जाए तो बस तमाशा ही खत्म है, चाहे कितनी चंगी गड्डी क्यों ना हो। तो इसे तरह सिख दा जीवन जिहड़ा तुरा है वह गुरबाणी, गुरबाणी का फैसला सिख वास्ते रब का फैसला है। तो आओ गुरबाणी तू पुछिए, तो गुरबाणी द्वारा सतगुरु जी फरमाते हैं, तारिया जहां

जिनी तुदनु तन के तेन जम ने नया। कितनी बख्शिश होगी किनों ते जिन्होंने गुरु नु तन के है, आओ धन गुरु नानक दिया बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाए सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए नानक नाम जपत सुख।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस

दूसरा शब्द शरण गुरु जी रतनारत पदार्थ साहब पर्याणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते